समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: उस दिन मैंने कसम खाई, जब तक मैं 3 अम्बेसडर कार नहीं खरीद लेती तब तक शादी नहीं करूंगी।
1: मत पूछो, वो तुम्हारी खानदान की निशानी है।
0: कार फिर ले लेंगे,

विश्लेषण, मनोरंजन, साहित्य और कला, संस्कृति, पर्यटन और विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।